0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: AGS ट्यूबलेट. दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम.
3: एंड कूल किंग हेयर ऑयल.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप नाक से 3 बार मौत देखे।
5: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़ियां वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
12: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त
13: अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
4: एमसीबी वन करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: एजीएस ट्यूबलर दिखाए काम, एजीएस ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम
5: एंड कूल किंग हेयर ऑयल।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: किसने कहा था पैसा?

0: आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
4: MCB One करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB One करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
5: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: FM 247 365. FM 247 365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: कुकिंग।
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: FM 247 365 FM 247 365

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कम्प्लेंट नंबर दर्ज करें और कम्प्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800 55 055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: Cool King. अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान.
4: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान.

0: कूल किंग।
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
4: 100 FM
0: कूल किंग।
3: रिटी का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
5: नशा न परेशानियां खत्म करता है, उसका शरीर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। पातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365

0: Yes, my friends, so I am back. और प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का तो बाकायदगी से आगाज भी हो चुका है, साथ ही साथ हमारे लिसनर्स भी आ चुके हैं. तो हमें आसिया मैसेज करती हैं, कहती हैं आई फर्स्ट टाइम मैसेज. अच्छा भाई, इन्होंने फर्स्ट टाइम हमें मैसेज किया है. कहती हैं क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसिया, आप कैसी हैं. थैंक यू कि आपने हमें फर्स्ट टाइम मैसेज किया और कर ही लिया. उसी के साथ साथ हमारे पास एक और मैसेज भी आया जिन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप. नाम वाम उन्होंने बताया नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं, कहाँ से हैं जरूर बताएं. और साथ ही साथ हमारे पास मैसेज आया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. कहते हैं आई एम गुड, यस ऑफिस से सुन रहे हैं. कहते हैं कल आपने शो में खूबसूरत ट्रैक शामिल किया, वो माई नेम, बहुत शुक्रिया. You're welcome. कहते हैं लंच में भिंडी है, आपके लंच में रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. ओके जी, सो भाई रशीद खान ने तो अपना लंच बता दिया है और ये हमेशा लंच बताने में जो है ना वो बाजी ले जाते हैं और हमेशा विनर बन जाते हैं लंच बताने में, क्योंकि बाकी सारे लिसनर्स ना एक बजने का वेट करते हैं और एक बजे के बाद बता रहे होते हैं कि लंच में क्या है, या वो इंतजार कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हम ही सवाल पूछें तो बताया जाएगा. लेकिन रशीद खान फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से हमारे रूल्स जानते हैं तो वो लंच का जिक्र जरूर करते हैं. अच्छा, मेरे लंच में क्या है, मेरे लंच में बेसन की रोटी है और साथ में जबरदस्त सी हरी चटनी है. तो ये है मेरा लंच और बाकी लोगों का भी लंच हम जानेंगे उन्हीं की जबानी. अच्छा भाई, आज जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि आज है 24 जून, तो 24 जून को कौन से दिन मनाए जाते हैं जरा इस पर भी नजर डालेंगे. तो आज आजकल कोई मजे के दिन नहीं मनाए जा रहे हैं कि जिस पर बहुत सारी बात की जाए, एंजॉय किया जाए. यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आज इंटरनेशनल फेरी डे मनाया जाता है. ओके, परियों का आलमी दिन. इट मीन्स कि परियां वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये उन छोटी परियों का जिक्र किया जा रहा है जो कि प्यारी प्यारी बच्चियां हैं हमारे घर में, जिन्हें परी ही तसव्वुर किया जाता है और एक्चुअली में वो इतनी प्यारी होती हैं कि उनको परी कहना बिल्कुल ठीक है. हकीकत में किसी ने परी को देखा तो नहीं, लेकिन इतनी प्यारी प्यारी बच्चों को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जी परियां बिल्कुल इन जैसी होंगी, प्यारी सी, नाजुक सी, खूबसूरत सी. तो आज आप ये दिन अपने घर में मौजूदा फेरी को जरूर विश करें, यानी कि अपनी बेटियों को जरूर ये दिन विश करें, क्योंकि आज इंटरनेशनल फेरी डे है. तो बिल्कुल भाई, उनको भी एहसास दिलाएं कि वो एक्चुअली में अपने बाबा की प्रिंसेस हैं. और ये बात तो सच है कि हर लड़की अपने बाबा की प्रिंसेस होती है, प्रिंसेस कह लें या फिर फेरी कह लें. वैसे तो बेसिकली वो कहते हैं ना पापा की परी, तो बिल्कुल भाई आज पापा के परियों का एक्चुअली में दिन मनाया जा रहा है. तो बिल्कुल भाई इस दिन को विश करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना हम बस सोचते रहते हैं कि भाई करना है या नहीं करना, लेकिन जरूर भाई विश तो करें आप लोग. हमारे पास एक और मैसेज आया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप भी बिल्कुल ठीक हैं, बस गर्मी से गुजर रहे हैं. ये बात तो ठीक है, गर्मी से गुजर रहे हैं ये बड़े मजे की बात है भाई, हम सभी गर्मी से गुजर रहे हैं और गर्मी की वजह से बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं, फिर बहुत सारे काम रह जाते हैं. लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि फिर भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है कराची में, यार अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कुछ तो कम हुई है गर्मी. अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, इस सूरत हाल से तो हम बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे. अनटिल एंड अनलेस, होप फॉर द बेस्ट. चलते हैं ब्रेक की जाने और आते हैं वापस कुछ ही देर में.
1: FM 100's टाइम चेक, इट्स 1 PM. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: पाकिस्तान
3: आजान जहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से.
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. कराची और उसके मजाफात में अजान जुहर का वक्त हुआ चाहता है,

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: FM 100 Like us on facebook.com/fm247365 247365. This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

हेलो एवरीबॉडी, सो आई एम बैक. मैं आ चुकी हूँ वापस और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी. विद मी मतलब फातिमा खान. तो भाई बात कुछ यूं है कि जिक्र गर्मी रोजाना की बुनियाद पर होता है और हम रोजाना ये जान रहे होते हैं कि जी आज कराची का दर्जा हरारत कितना है, कल कितना था, आगे आने वाले दिनों में कितनी गर्मी है. और जब बात गर्मी की आती है ना, तो गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हम अपने बहुत सारे कामों को करना छोड़ देते हैं और यही सोचकर कितनी गर्मी में कौन ये करेगा कौन वो करेगा. और जब बात आए अपने बालों के ख्याल रखने की ना, तो सबसे ज्यादा जो बेहतरीन तरीकाकार है अपने बालों का ख्याल रखने का, वो तो है जी तेल लगाओ और अच्छे से बाल पाओ. लेकिन इस गर्मी में तेल लगाया नहीं जाता क्योंकि इतनी गर्मी है भाई, कौन तेल लगाए. लेकिन अगर मैं आपको एक बड़ी ही मजेदार सी बात बताऊं जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएं, तो आज इस गर्मी का हल लेकर आई हूं मैं आपके पास. जी हाँ, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कूल किंग हेयर ऑयल के हवाले में. जी हाँ, चलता फिरता एसी है, मैंने लगाया है और लिटरली एसी वाली फीलिंग आ गई है. तो आप इस एसी वाली फीलिंग को कब ट्राई कर रहे हैं, यानी कि आप गर्मी में कोई टेंशन नहीं कि सर में तेल लगाएंगे और इतनी गर्मी लगेगी, ना ना ना. अगर आप कूल किंग हेयर ऑयल लगाएंगे तो आप पाएंगे चलता फिरता एसी. इसे लगाने के बाद आपको कूलिंग और रिफ्रेशिंग फीलिंग आएगी. जी हाँ, गर्मी, स्ट्रेस, हीट और थकान सब हो जाएगी खत्म सिर्फ और सिर्फ कूल किंग हेयर ऑयल के साथ. तो आप कब ला रहे हैं, जल्दी से ले आएं भाई, क्योंकि ये चलता फिरता एसी है. तो ये एसी की ऑफर आपको जल्द ही अवेल करनी चाहिए. तो जल्दी से जाएं और अपना कूल किंग हेयर ऑयल लाएं.

0: जी तो भाई ट्रैक भी शामिल कर लिया, साथ ही साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दी है. एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर मैसेजेस जो कि हमारे पास मौसूल हो रहे हैं. लेकिन उसी के साथ साथ आपको तरीका एक भी बता देते हैं. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, के एच आई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. तो भाई इस तरीकेकार को फॉलो करके हमें जल्दी से बता दें कि इस वक्त आपके लंच में क्या बन रहा है, क्या बन चुका है, क्या बनने जा रहा है, या फिर क्या खाने का इरादा है, या फिर भाई किचन में आ तो गए लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं. अच्छा हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं आपी माय नेम इज रिहान एंड मैंने आपको पहली बार मैसेज किया था. ओके जी. इसी के साथ साथ हमारे पास एक और मैसेज आया है, कहती हैं पहले भी मैंने किया था जिस पर नेम नहीं था. ओके तो आपका नेम क्या है? फिर हमारे पास मैसेज आया है, कहती हैं आपकी आशा, आशा है मेरा नाम और मैं भी आपको मैसेज करती हूं पर नेम नहीं लिखती. क्यों क्यों नहीं लिखती? आई रियली वॉन्टेड टू नो दिस. भाई आपने नाम तो बताएं ताकि जब हम आपका मैसेज शामिल करें तो बिल्कुल आपका नाम लेकर हम उस चीज को हाईलाइट करें कि भाई इन्होंने ये कहा है, उन्होंने वो कहा है. मगर नाम के हम भला कैसे बता सकते हैं कि कौन और कहां से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त. तो ये है भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस चॉइस है. कोई कुछ कहता है और कोई कुछ नहीं कहता, और कोई कुछ क्यों नहीं कहता ये तो अब हम आप ही से जानेंगे कि कोई कुछ क्यों नहीं कहता. खैर जी लंच में क्या है भाई जल्दी जल्दी बताएं. रशीद खान तो बता चुके हैं और बाजी ले चुके हैं कि भिंडी है उनके लंच में, बाकी लोगों के लंच में क्या है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. और एक और मैसेज आया, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा लेकिन लंच बता दिया है, कहते हैं आपकी दाल है और पालक की सब्जी है. दाल है और पालक की सब्जी है, दैट्स ग्रेट. दाल भी बहुत मजे की लगती है, दाल तो मैं कहती हूँ हर तरह की दालें बहुत अच्छी लगती हैं और पालक भी बड़ी मजे की लगती है. अच्छा देयर इज इन ऑल्सो कॉम्बिनेशन विच इज कॉल्ड मूंग की दाल पालक का साग. हमारे यहाँ इसको इस नाम से जाना जाता है, बहुत सारे लोग इसको शायद पालक की दाल कहते होंगे. दाल तो दाल होती है लेकिन उसमें पालक डलता है और वो बड़ी मजे की लगती है. और हमारे यहाँ वैसे अक्सर ये इस तरह का मील बनता है कि जी बेसन की रोटी साथ में मूंग मसूर पालक की दाल का ये साग और उसी के साथ साथ आलू गोभी, तो इस तरह बेसन की रोटी को खाया जाता है. लेकिन हर जगह जरा मुख्तलिफ मुख्तलिफ ट्रेंड्स होते हैं, तो अब ये मैं नहीं जानती कि आपके यहाँ किस तरह बनता है, लेकिन जिस तरह भी बनता है हमें जरूर बताएं. और क्योंकि हम मजीद लोगों के लंचेस जान रहे हैं तो अभी चलते हैं ब्रेक की जानेब और आते हैं वापस ट्रैक के साथ.
1: कुकिंग. चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम. पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
2: एमसीबी वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ. तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं. एमसीबी बैंक फॉर लाइफ.
1: कूल किंग. चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम. पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

ओके मेरे दोस्तों, तो हम आ चुके हैं वापस, और जब वापस आ जाते हैं तो जाहिर है बहुत सारी बातें होती हैं आप लोगों से, तो बातों का सिलसिला तो जारी है ही हमारा और आपका एक साथ। और बिल्कुल ठीक है जी, लंच का जिक्र तो हमने कर लिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता मैसेजेस आना शुरू होंगे जिन्हें हम शामिल करेंगे। और ये बात तो तय है कि भाई अगर आप हमें मैसेज करते हैं और वो मैसेज हम तक पहुंचता है तो उसे हम शामिल तो जरूर करते हैं, ऐसा होता नहीं है कि हम उसे शामिल ना करें। तो जल्दी से अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। ऑल राइट, अच्छा भाई एक बड़ी जरूरी बात जो आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे, और वो जरूरी बात यह है कि क्या आप जानते हैं कि पिक्चर्स के शौकीन तो हर जाने हर तरफ बहुत सारे लोग हैं, तस्वीरें खिंचाने का शौक हम सब रखते हैं, और हकीकतन तौर पर एक जो सबका एक बड़ा वायरल तरीन मैं कहूंगी कि पोज होता है वो होता है विक्ट्री का साइन दिखाना, जो कि उमूमन तौर पर हर कोई ये पोज जरूर कैरी करता है कि जी विक्ट्री का साइन दिखाना, या अक्सर औकात बहुत सारे पोजेज में जो हमारा हाथ है, अगर हमारा हाथ यानी कि प्लम यानी कि हथेली नजर आती है तो अब भाई एक्सपर्ट्स ने लोगों को खबरदार कर दिया है कि अब आप अपनी तस्वीरें खिंचवाते वक्त इस चीज का एहतियात करें कि आपकी जो उंगलियां हैं वो नजर ना, यानी कि अगर आपका प्लम नजर आता है तो इससे बआसानी आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसे स्कैन किया जा सकता है, जिससे आपकी बहुत सी मालूमात, आपके अकाउंट्स और दीगर चीजों को हैक भी किया जा सकता है। तो अब के एक्सपर्ट्स ने इस चीज को कह दिया है, शेयर कर दिया है कि काइंडली अब लोग इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल भी ना खिंचवाएं जिसमें उनके हाथ यानी कि हथेली नजर आ रही हो, जिसमें क्योंकि बहुत आसानी से उनके फिंगरप्रिंट्स को कैच किया जा सकता है और उनकी सारी मालूमात हासिल की जा सकती है, उनके अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है। सो नाउ अगर आप तस्वीरें खिंचवाएं तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ऐसा पोज से तस्वीर नहीं खींचनी जिससे आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो बआसानी कैच हो जाएं। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट पैगाम, और आप देखें जरा अपनी गैलरी में जाकर कि आपने ऐसी कितनी तस्वीरें खिंचवाई हैं जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स बआसानी लिए जा सकते हैं। क्योंकि अब के लिए तो हमने आपको खबरदार कर दिया है, जो गलती कर दी चलो सो कर दी, लेकिन अब आगे एहतियात जरूरी है, तो एहतियात करें और ये मैसेज आगे लोगों तक पहुंचाएं। जब तक हम भी चलते हैं ट्रैक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक।

0: थी।
1: तो आसिम अजहर के ट्रैक को आप लोग एंजॉय कर रहे थे और आसिम अजहर इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर बिकॉज ऑफ देयर न्यू सॉन्ग्स जो कि सबको बहुत पसंद आ रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है भाई। तो भाई हमने आपको जरूरी पैगाम दे दिया है कि अब आप अपनी तस्वीरें खिंचवाते वक्त इस चीज का एहतियात करें, ख्याल रखें कि जी आपके जो वो हथेली है वो नजर ना आए बिकॉज बहुत आसानी से जो है वो फिंगरप्रिंट्स कैच हो सकते हैं जिससे आपकी मालूमात बासानी लोगों को मिल सकती है। और मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत सारे लोगों ने अपनी पिक्चर्स चेक करना शुरू कर दी होंगी और सोच रहे अरे यार ये तस्वीर मैंने क्यों खिंचवाई थी, अरे ये वाली क्यों खिंचवाई थी। पर कोई बात नहीं, चलो जी ऐसा भी होता है। अब बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता और फिर जब पता चलता है तो फिर हम अफसोस करे होते हैं, अरे यार ये अब पता चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। जब भी आपको कोई भी मालूमात मिले ना तो उस मालूमात का फायदा उठाया करें, यानी कि एहतियात क्या करें कि चलो अब पता चल गया ना तो अब नहीं करनी है गलती या जानबूझ कर करना, दिस इज वेरी रॉन्ग। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सिले मशवरे दिए जा रहे होते हैं लेकिन अब वो अपनी धुन में मगन रहते हैं, वो कहते हैं हाँ देखा जाएगा जो भी होगा, देख लेंगे कर लेंगे। तो मैं कहती हूँ ये बड़ी गलत बात है। अगर कोई भी आपको कोई बात समझा रहा है या सिखा रहा है तो प्लीज उस पर अमल क्या करें, कल करेंगे बाद में करेंगे तब में करेंगे, ये वे नहीं होना चाहिए। ये मेरे लिए तो बहुत गलत बात है। मैं तो लोगों से ये कहती हूँ कि अच्छी बात है अगर कोई आपको कुछ अच्छा सिखा रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपके काम आएगा तो बिल्कुल जी उस पर अमल करें। बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं फिंगरप्रिंट्स वाली, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई सीनियर आपको कुछ समझा रहा है और वो बात जो आपके काम आए तो उस पर जरूर अमल किया करें। आजकल सोसाइटी में एक ये चीज बड़ी देखने में आती है कि वो कहते हैं हम ऐसा क्यों करें, उसने कहा है, वो कौन होता है कहने वाला। अरे अगर वो जो भी है आपको कोई सिला मशवरा दे रहा है जो आपको भी पता है कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है तो अगर आप इसे मान लेंगे तो उसमें कोई मजायका नहीं है। तो ये मत सोचा करें कि उसके कहने पर मैं ये काम नहीं करूंगा। जरूरी होना चाहिए कि वो काम आपके लिए कितना अच्छा है, आपकी जिंदगी में अगर वो चीज फायदा पहुंचा रही है तो फिर तो आपने जरूर करना है। अच्छा भाई रिहान कहते हैं आप ही आज मेरे लंच में शामी कबाब विद रायता है और आपके लंच में क्या है, मेरे लंच में बेसन की रोटी और हरी चटनी है। आज हमारे लंच में वो वाला लंच नहीं है जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पूरा एक मील प्लान होता है बेसन की रोटी होती है, तो आज जरा सा मुख्तलिफ है लेकिन लंच में अलबत्ता बेसन की रोटी ही है। और इसी के साथ साथ हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की जानेब और आएंगे वापस हम लोग जो हैं वो ट्रैक के साथ वापस आएंगे ताकि आप लोग हमारी कॉन्वर्सेशन तो एंजॉय कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ ना मैंने कहा कि आप ट्रैक्स भी एंजॉय करें, तो इसलिए हमने सोचा है कि अभी चलते हैं ब्रेक की जानेब, आते हैं वापस ट्रैक के साथ।

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
0: लाइक अस ऑन FM 24/7 365. FM 24/7 365.
2: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है. वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है.
3: घर के अफराद और आमदनी में तवाजन
4: हमारी जिम्मेदारी है.
5: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
7: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
8: इट्स 24 आवर्स नॉनस्टॉप वाइब्रेशन. Connecting you.
9: Connecting.
8: Holding you.
9: Holding.
8: With FM 100.
10: FM 100. FM 100.

0: कूल किंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
0: कूल किंग।
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 fm247365
4: back to back only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is fm

0: FM 100's time check. It's 3 p.m.
1: Cool King. अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया. FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
4: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is F.

0: Cool King.
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: 100 FM
0: कूल किंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: 24/7, 365 FM. 24/7, 365 FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: कुकिंग। चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: 100 FM
0: कूल किंग।
2: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
3: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
0: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: The music plays on.
1: The music plays on.
2: The music plays on.
3: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC.
0: And
3: Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja.
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: एक

0: एचडीएस ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। एचडीएस ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: किसने कहा

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम,
4: एंड कूल किंग हेयर ऑयल।

0: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
4: किसी ने कहा था

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम,
4: एंड कूल किंग हेयर ऑयल।

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Mikhai Aram. AGS Tubular Battery. Then go ahead, Aram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Mikhai Aram. AGS Tubular Battery. Then go ahead, Aram.
0: And
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: कूल किंग
6: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
7: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
8: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
9: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
8: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर

0: This program is brought to you by Tufaan Hai.
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे, होशियार रहें, मोहतात रहें, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
4: FM247365
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by Tufaan Hai. नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
3: facebook.com/fm247365।
4: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
3: कूल किंग.
4: रिटी का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई.
5: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: तूफान है. हर जीत की पहचान है.
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
10: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
11: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
10: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या.
10: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई.
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
12: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
10: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
11: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
10: आइए वेट से आगे का सोचें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक न करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटेबल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद न करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
13: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
8: सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात FM 100 पर।

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: FM 24/7 365
2: Karbala, Karbala, Karbala, Karbala, Karbala.
3: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात FM 100 पर।

अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना.
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए.
3: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
4: सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात FM 100 पर.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Us on facebook.com/fm247365
5: Karbala, Karbala, Karbala, Karbala, Karbala.
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशिया FM 100।

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
2: लाइक अस ऑन
3: FM 24/7 365
4: नबी का मदीना तेरे बगैर।
5: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात FM

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है. ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें. जैज सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए.
6: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
7: facebook.com/fm247365 fm247365
8: ekarbala aap sun rahe hain muharram ul haram ki khususi nashriyat fm 100 par.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात FM 24/7।

अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।

0: गए वहां पर तो इब्ने जियाद ने उनको अपनी चाल में लाकर शहीद कर दिया। जब मुस्लिम बिन अकील जमीन पर गिरते हैं तो उनका एक जुमला है कि काश कोई मेरे भाई को ये बता दे हुसैन को कि मुझे शहीद कर दिया गया है। और मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिनके हाथ पर पहले दिन 15,000 लोगों ने बैत की और जब वो इब्ने जियाद के पास जा रहे हैं तो तकरीबन 40,000 लोग बैत कर चुके थे। अब वो जब नमाज पढ़ाकर जा रहे हैं तो नमाज जब उन्होंने शुरू करवाई है तो 500 अफराद है उनकी इक्तदा में और जब सलाम फेरा है तो तारीख मादे के एक भी शख्स
1: एक भी नहीं था
0: यानी कूफी लायूफी कूफा वाले वफा नहीं करते। हजरत इमाम हुसैन वहां से चल पड़े, उनको वो खत मौसूल हुआ कि यहाँ पे हालात साजगार हैं और आगे। और आजकल का तो दौर है नहीं कि जो मोबाइल में फौरन कॉल कर लें। उस वक्त उनको दूसरा खत बहुत देर से रिसीव हुआ। जब तक वो रिसीव हुआ वो करबला के मैदान में आ चुके थे। आप आए सामने हुर का लश्कर था, हुर भी उस वक्त जो है वो यजीद के साथ था लेकिन वो हुर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिनके नसीब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ और लिखा और अपने दीन का काम जिससे चाहे वो ले लें। बहरहाल उन्होंने रोका, वो उस वक्त रुके और जब अपने खेमे को उस मैदान में उन्होंने लगाया पड़ाव डाला तो किसी से पूछा कि ये कौन सा मकाम है तो लोगों ने बताया कि करबला का मैदान है। बस इमाम हुसैन ने अपने रुफका से कहा कि यही वो मकाम है कि जिसमें हमारी शहादत हुई। अब आप ये देखें यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत पॉइंट उलमा ने लिखा कि इमाम हुसैन पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी हयात में पता था कि मैंने शहीद होना है, उनको पता था कि मैंने किस मकाम पर शहीद होना है, तभी ये फरमाया कि यही हमारा शहादत का है। इसी तरह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को जनाब जिब्रील के जरिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही के तौर पे बता दिया गया था कि आपके नवासे को शहीद होना है। हजरत इमाम अली बल्कि मौला अली कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक मकाम से गुजरे दरिया फरात के किनारे तो किसी से पूछा कौन सा मकाम है, कहा ये करबला का मैदान है। आप रोने लगे तो आपके साथियों ने पूछा हजरत आप क्यों रोते हैं, कहा यही वो मकाम है जिसमें मेरी औलाद को शहीद किया जाएगा। यानी हजरत अली को भी पता है, हुजूर को भी खबर है, हजरत फातिमतुज़्ज़हरा को भी पता है, हजरत इमाम हुसैन को भी पता है कि इतनी सख्त आजमाइश आनी है, ऐसे शहीद होना है, लेकिन किसी ने भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर हाँ दुआ नहीं की कि मौला इस शहादत को मौखर कर दे।
1: हालांकि अगर मांगते तो क्या नहीं, क्या
0: ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है, मौला इस शहादत को टाल दे, वो तो अंबिया के सरदार है। अगर दुआ करते तो क्या कबूल नहीं होती, बल्कि उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की। हजरत अली वलियों के सरदार है, दुआ करते तो क्या कबूल नहीं होती। हजरत फातिमा जन्नती खवातीन की सरदार है, खुद इमाम हुसैन बल्कि जब करबला के मैदान में गए तो एक शख्स आया आपके पास और आके कहा कि हम तुम्हें प्यासा शहीद कर देंगे, तो इमाम हुसैन ने हंसते हुए उसको कहा कि प्यासा मैं नहीं शहीद हूँगा, प्यासा तू मरेगा। और उसके बारे में आता है कि वो थोड़ा सा पीछे हटा और उसने प्यालों के प्याले पानी पी लिया लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती थी और वो मर गया। इसी तरह एक शख्स आया और कहा कि हम तुम्हें जहन्नम की आग में माद अल्लाह जो है वो डाल देंगे, तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि जहन्नम की आग में मैं नहीं जाऊंगा, इंशाल्लाह तू जाएगा। वो अपने घोड़े पे सवार था, घोड़ा बितका और ऐसा बितका कि वो थोड़ा सा आगे गया और वहां पे जो आग की एक वो जिंदगी बनी थी उसके अंदर उसको डाल दिया। तो ये तो वो शख्सियात हैं कि जिनके लब से कलिमात निकल जाए तो वो कलिमात कबूल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये दुआ नहीं मांगी कि मौला मेरी शहादत को टाल दे, यानी अल्लाह की रिजा पर राजी था। आज हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आए, कोई भी आजमाइश आए, हम फौरन अल्लाह की बारगाह में शिकवे शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, घर की कोई चीज खराब हो जाए, के इलेक्ट्रिक का हमारा बिल ज्यादा आ जाए, यानी कोई भी चंद एक आजमाइश एक साथ आ जाए तो हम बस ये कहते हैं कि या अल्लाह माज़ अल्लाह। ये भी सुनने में आया कि तुझे हमारे ही घर मिला माज़ अल्लाह, लेकिन आप ये देखें कि ये वो खानदान है कि हजरत अमीर हमजा की शहादत को देख लें, खुद हजरत अली की शहादत को देख लें, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर कितनी आजमाइश आई, खुद इमाम हसन को शहीद किया गया और अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने आपका 6 माह का शहजादा, आपका 18 साल का शहजादा, ये सब शहीद कर दिए गए, लेकिन फिर भी अल्लाह की रिजा पर राजी हैं और इस्तेकामत का पहाड़ बन गया।
1: सुभान, बिल्कुल एक छोटी ब्रेक लेते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की अल्लामा साहब आपने, माशाल्लाह आज पहली बार आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और दिल चाह गया आपसे मुलाकात पहले होनी चाहिए थी, मगर हर काम रब की रजा से ही होता है, वो जो चाहते जब चाहते जब ही मिलते हैं, हर काम अपने वक्त के ऐन मुताबिक होता है। जज़ाकअल्लाह, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात FM 100 पर। This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
2: FM 100 Facebook.com/ 365 FM 247 365.

0: सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और वक्त जो है 12:25 हो चुके हैं, प्रोग्राम जो आप रेडियो पर तो सुन ही रहे हैं, FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आप सुन रहे हैं ये किरण। और इसके साथ साथ प्रोग्राम की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग अगर आप देखना चाहें, ज्वाइन करना चाहें हमें, तो फेसबुक पर आप हमने यकीन ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मौजूद है वहां पर, और क्लिक करेंगे तो यकीन आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पर आ जाएंगे। और अगर आप यूट्यूब पर मौजूद हैं तो वहां पर यूट्यूब पर आप जाएंगे और लिखेंगे MAKS MAX HGTV, आप लिखेंगे तो यकीन आप ज्वाइन कर पाएंगे हमारी इस लाइव वीडियो को, और लाइव कमेंट्स के जरिए आप यकीन जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यकीन जनाब इस वक्त हमें ज्वाइन किया रफीक जान ने, और ग्रीटिंग फ्रॉम अली भाई फ्रॉम द म्यूनिसिपलिटी, रफीक जान अली भाई। तो बहरल जी चले, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया जी अली भाई की तरफ से, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू अली भाई, आपकी मोहब्बतों का थैंक यू, जजाकल्ला। और अब इसके बाद कौन सा कलाम आप सुना रहे हैं?
1: मन का बताइए
0: जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।